0: पहले सुनते हैं मन की बात कार्यक्रम का वो अंश जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय का उल्लेख कर रहे हैं।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं, यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं।
0: तो श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और हमारे साथ हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध नशा मुक्त भारत अभियान आज एक बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। इस अभियान का असली उद्देश्य क्या है? भारत के युवाओं के लिए और देश को आगे बढ़ाने यानी विकसित भारत बनाने के लिए इसका नशा मुक्त होना क्यों जरूरी है?
2: देखिए, आज अगर हम विश्व में देखें तो भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ 15 वर्ष से लेकर के 29 वर्ष तक की जो एक ब्रैकेट है, इसमें 37 करोड़ युवा हैं। ये युवा ही आज हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है और यदि इस युवा शक्ति को हम अपने राष्ट्र के विकास में सही तरह से उपयोग में लाते हैं तो ये हमारे लिए एसेट बनेगा। लेकिन अगर यही युवा अपने आप को ड्रग्स वगैरह के एडिक्शन में, अल्कोहल के एडिक्शन में

0: अगर एंगेज कर लेते हैं तो इनका जो कंट्रीब्यूशन हमारे राष्ट्र के विकास में होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी इस स्कीम पे बहुत जोर दे रहे हैं, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। जो भी विकसित देश आज विश्व में हैं, उन्होंने अपनी युवा शक्ति को अच्छी तरह से हार्नेस किया है, उनकी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज किया है, और यदि हम विकसित बनना चाहते हैं 2047 तक, तो हमें भी यही करना होगा।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगला प्रश्न ये है सर कि मादक द्रव्यों का सेवन एक जटिल और निरंतर बदलने वाली चुनौती है। पूरे देश में ये समस्या कितनी बड़ी है और किस तरह की नई नई प्रवृत्तियां देखने को सामने आ रही हैं? इसका पता लगाने के लिए क्या कुछ प्रणालियां अपनाई जा रही हैं?
0: देखिए, ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर है एम्स दिल्ली में, तो उन्होंने एक नेशनल सर्वे किया और उस सर्वे में उन्होंने अल्कोहल का, ड्रग्स का और जो इंजेक्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं इन सभी का उन्होंने सर्वे से पता लगाया। तो इसमें ये मालूम चला कि आज की तारीख में हमारे देश में लगभग 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अल्कोहल का सेवन करते हैं, और इनमें से करीब 5% ऐसे हैं जो कि इस पे डिपेंडेंट हैं, जो इसके बिना कुछ कर नहीं पाते। और इसी तरह से जो गांजा है या उसके जो और पदार्थ हैं, तो उनकी संख्या भी 3 करोड़ से ज़्यादा है, और जो ओपियोइड्स हम बोलते हैं उसकी संख्या करीब 2.25 करोड़ है। और जो चिंता का विषय इसके अंदर है वो ये है कि इसमें बच्चों की और एडोलेसेंट्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब इस सर्वे के थ्रू सामने आया है। इसके अलावा समय समय पर जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी होते रहते हैं, तो इन सब से भी हमें जानकारी मिलती है कि ये समस्या कितनी बड़ी है। और जो सीजर्स हो रहे हैं, जो प्रिवेंटिव मशीनरी जो हमारी जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, तो ये सब भी जो है इनके सीजर्स किस तरह से हो रहे हैं, उससे भी हमें आइडिया लगता है कि ये समस्या कितनी बढ़ गई है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल के मन की बात के कार्यक्रमों सहित विभिन्न अवसरों पर विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा के महत्व पर बार बार बल दिया है। आप स्वस्थ एवं नशा मुक्त युवा आबादी और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में भारत की यात्रा के बीच संबंध को किस प्रकार देखते हैं?
0: देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारी जो युवा शक्ति है ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। आज की तारीख में हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इन युवाओं की प्रोडक्टिविटी का हमें पॉजिटिव यूज़ करना है। और आज की तारीख में जैसा हम देखते हैं कि 37 करोड़ युवा हैं, जो करीब 27% हैं हमारी जनसंख्या का, ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। धीरे धीरे हमारी जनसंख्या भी स्टेबलाइज हो रही है, और ये अनुमान लगाया जाता है कि 2036 तक जो है ये युवा जो एक ब्रैकेट है इसके अंदर करीब 22% लोग बचेंगे। तो इन्हें हमें पॉजिटिवली यूज़ करना है। अगर एक युवा नशाग्रस्त होता है तो उसका स्वास्थ्य खराब होता है, और अगर उसको उसका परिवार नशे के लिए पैसे नहीं दे पाता है या उसके स्वयं के पास वो नहीं कमा पाता है, तो वो छोटे मोटे अपराध भी करने लगता है। तो समाज को ये नुकसान होता है कि उसमें एक अपराधी उत्पन्न होता है। तो एक युवा के नशाग्रस्त होने पर युवा का नुकसान होता है, परिवार का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, यानी कि राष्ट्र का नुकसान होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने युवाओं को इससे दूर रखें, क्योंकि तभी हम अपने विकसित भारत का अरमान पूरा कर पाएंगे, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो एक उद्देश्य दिखाया है, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे।
1: तो ये मान सकते हैं कि लक्ष्य बहुत बड़ा है और समय बहुत ही सीमित है हमारे पास। इससे पहले कि हम चर्चा अपनी आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आपका फिर से स्वागत है और आज हमारे अतिथि हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी। तो सर, अगला प्रश्न आपसे ये है कि इन क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा कार्य किए जाने के मद्देनजर समन्वित राष्ट्रीय कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए उनकी संबंधित भूमिकाओं में किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है?
1: देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जो सरकार के अलग अलग विभाग हैं वो इसमें मिलकर काम करें और साथ में हम समाज को भी जोड़ें, परिवारों को भी जोड़ें। तो जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार इसमें चार स्तंभों पे काम कर रही है, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड रिहैबिलिटेशन। तो प्रिवेंशन का मतलब ये है कि जो भी ये पदार्थ हैं इनकी उपलब्धता को कम करना, उसको रोकना, जो ट्रैफिकिंग वगैरह हो रही है, इस पे हमारा

0: गृह मंत्रालय काम कर रहा है, उनकी एजेंसियां काम कर रही हैं। दूसरा स्तंभ जो मैंने बताया, प्रोटेक्शन। तो हमें ये अवेयरनेस फैलानी है कि इन चीज़ों के कितने दुष्प्रभाव हैं। इस काम में जो हमारा विभाग है, युवा कार्यक्रम विभाग जो है, वो इस दिशा में कार्य कर रहा है। और न केवल हम अवेयरनेस फैलाते हैं, बल्कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, माई भारत पोर्टल है हमारा, उसमें हमारे वॉलंटियर्स हैं, और हमारा जो NSS है, जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में और विद्यालयों में है, 11वें और 12वें में, उसके द्वारा जो युवाओं की एनर्जी है, उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में हम चैनलाइज करते हैं। बाकी के जो दो स्तंभ हैं, सपोर्ट एंड रिहैबिलिटेशन, इसमें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट काम करती है कि अगर कोई नशे की लत में पड़ जाता है तो उसको कैसे उससे बाहर निकाला जाए और उसको कैसे सपोर्ट किया जाए। तो इस तरह से ये तीनों जो एंटिटीज हैं सरकार की, ये मिलकर इस दिशा में कार्य कर रही हैं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है, यानी कि इनको एक साथ लेकर चलने की बात की जा रही है। जमीनी स्तर पर विशेष रूप से युवाओं, परिवारों और स्थानीय समुदायों के लिए इस दृष्टिकोण का क्या अर्थ हम समझ सकते हैं?
0: देखिए, इसमें जो पूरी, अगर मैं इसको जंग कह सकूं, इसमें हमारे उनके परिवारों का, युवाओं के परिवारों का, सभी के परिवार का और समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि सबसे पहली यूनिट परिवार है जिसको ये मालूम चलेगा कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है, कुछ चीज़ नॉर्मल नहीं है। तो वही इसको आइडेंटिफाई करके और जो भी इसकी तरफ बढ़ रहा है उसको वहीं रोक सकते हैं। अगर वो ज़्यादा आगे बढ़ गया है तो उसका डी एडिक्शन होता है या रिहेबिलिटेशन होता है, उसकी तरफ उसको ले जा सकते हैं। समाज का ये योगदान रहता है कि अगर ऐसा कुछ भी इस तरह के पदार्थों की बिक्री हो रही है तो उसके बारे में समाज में किसी न किसी को तो मालूम चल ही जाता है। तो वो इसकी जो संस्थाएं हैं, जो इसकी रोकथाम की व्यवस्था करती हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन दे। इसके अलावा अगर कम्युनिटी एकजुट होकर ये कहती है कि हमारे यहाँ कोई नशा नहीं करेगा, इन सब चीज़ों से हम दूर रहेंगे, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो बहुत चीज़ें, उनका जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं उसमें सीखते हैं। तो उस दृष्टि से इसमें जो हमारे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत अच्छे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे देश में काम कर रहे हैं, और इन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जब व्यक्ति जुड़ता है तो वो कई बार अपने पूरे परिवार के साथ जुड़ता है। तो इसमें भी अगर इस विषय की चर्चा होती है, इनके दुष्प्रभाव बताए जाते हैं, तो उसका भी एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से परिवार का, समाज का, जो ये समाज सेवी संस्थाएं हैं इनका, जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनका, हम सभी का इसमें योगदान है।
1: तो सामाजिक तौर पे हम देखें तो जागरूकता और चेतना लाना बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है इस दिशा में। अगला प्रश्न है, युवा कार्यक्रम विभाग ने माय भारत के माध्यम से विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान को युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन के रूप में शुरू किया है। युवाओं को केवल लाभार्थी के रूप में देखने के बजाय स्वयं उन्हें अभियान के केंद्र में रखने के पीछे की क्या सोच है?
0: अगर हम किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे जिसको ये नशे की आदत पड़ी, तो कई बार हमें ये उत्तर मिलेगा कि ये आदत उसको क्यों पड़ी, कि वो किसी तनाव में था, उसके ऊपर कोई प्रेशर था, या जस्ट फॉर फन उसके आसपास के लोगों ने, उसके साथियों ने उससे कहा बस एक बार। ये बस एक बार जो है अनफॉर्चुनेटली बार बार बन जाता है। तो इसीलिए अगर युवा इसका लाभार्थी न होकर के खुद ही इसका संदेश वाहक होगा, तो जो ये बस एक बार की बात है, ये नशा करने के लिए नहीं कही जाएगी, ये बल्कि कोई समाज सेवा का कार्य करने के लिए कही जाएगी, किसी अच्छे काम के लिए कही जाएगी। इस दिशा से युवाओं का खुद का इसमें बहुत महत्व है, उनकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि कोई नशे में चला गया है, किसी को मालूम चला कि उसका दोस्त जो है वो नशे में चला गया है, तो उसको बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये एक युवा, उसका जो मित्र है, वो उसको अच्छे से दे सकता है। तो इसीलिए इस पूरी योजना का, इस पूरी कैंपेन का फोकस ये है कि युवा इसमें सहभागी बने, ना कि लाभार्थी।
1: युवा सहभागी बने और अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपने समाज से जब चाहे, जैसी चाहे आवश्यकता

उन्हें पढ़े, मदद ले सकें। इस तरीके का एक ओपननेस होनी चाहिए, उस तरीके का एक इंड्यूसिव एनवायरनमेंट उसको मिलना चाहिए बच्चे को। तो इसी सोच के साथ हम लेते हैं यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के हमारे अतिथि हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी, और आज हम बात कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम का विषय है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान दीर्घ अवधि तक युवाओं की सहभागिता बनाए रखने का प्रयास करता है। इस विस्तारित अभियान का उद्देश्य क्या है और ये एक बार की जागरूकता गतिविधियों से आगे बढ़कर निरंतर व्यवहारगत तथा सामुदायिक स्तर पर परिवर्तन लाने की दिशा में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा पाएगा?
1: जैसा कि आपने बताया कि ये कार्यक्रम जो है ये 100 सप्ताह का कार्यक्रम है। इसको 100 सप्ताह का रखने का भी एक साइंटिफिक रीजन है कि जो भी रिसर्च हुआ है उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि अगर हम किसी चीज को 21 दिन तक करते हैं तो हम उसके लिए अक्लेमेटाइज होते हैं, वो हमारे लिए एक रूटीन में आता है। अगर उसको हम 66 दिन तक करते हैं तो ये हमारी जो है ऑटोमेटिक बनने लगती है ये हैबिट। अगर हम इसको एक साल तक करते हैं तो ये हमारी लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट होता है, और अगर हम इसको 100 हफ्ते तक कर लेते हैं तो ये हमारी आइडेंटिटी में लॉक हो जाता है, ये हमारे अंदर इतना डीपली इनग्रेन हो जाता है कि फिर ये हटता नहीं। तो इसी दृष्टि से इस कार्यक्रम को 100 हफ्ते का रखा गया है। जैसे हमारा जो NSS प्रोग्राम होता है जो कि हम कॉलेजेस और 11th एंड 12th में चलाते हैं, उसमें भी उसकी ड्यूरेशन भी हम लोग 2 साल रखते हैं, तो 2 साल लगभग 100 हफ्ते हो गया। तो ये इसमें जिससे कि ये उनकी एक आदत बन जाए, ये उनके जहन में उतर जाए, जिससे कि वो आगे भी कभी इस विषय में ना सोचें कि हम कोई नशा करेंगे। और इसमें एक चीज और आ जाती है कि हम केवल एक चीज पर जोर नहीं दे रहे। हमने जैसे शुरुआत हमने की थी कि हम प्लेज लेंगे, हम सभी लोग संकल्प लेंगे नशे से दूर रहने का, उससे आगे बढ़कर हम लोगों ने पूरा ये 100 सप्ताह का कार्यक्रम बनाया है। तो इसमें हम परिवार को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम समाज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम हेल्थ की बात करेंगे, फैमिली की बात करेंगे, लाइफ स्किल्स की बात करेंगे, हम जो है स्पिरिचुअल एंगेजमेंट की बात करेंगे, फिटनेस की बात करेंगे। तो ये सभी चीज़ों को मिलाकर के ये 100 सप्ताह का कार्यक्रम बनाया गया है।
0: तो एक तरीके से हम बात करें तो होलिस्टिक अप्रोच से आप इस चीज़ को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नशा मुक्त जो अभियान है वो हर लेवल पर, हर स्तर पर समाज में कार्य कर सके।
1: जी,
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग समुदाय आधारित तंत्र के रूप में नशा मुक्ति मित्र नेटवर्क विकसित कर रहा है। युवा कार्यक्रम विभाग, माय भारत, NSS और अपने युवा स्वयंसेवी नेटवर्क के माध्यम से जमीनी स्तर पर इस पहल को किस प्रकार पूरक सहयोग प्रदान करें कि इसे सुदृढ़ता प्रदान हो सके?
1: जैसा कि मैंने बताया था कि 3 विभाग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने एक कार्यक्रम लेके आए हैं नशा मुक्ति मित्र। तो ये नशा मुक्ति मित्र जो हैं वो वॉलंटियर्स हैं जो पहले ये समझेंगे कि किस किस तरह के नशे होते हैं और इनके क्या दुष्प्रभाव हैं और इसके बारे में जागरूकता फैलाएं, यदि कोई इससे प्रभावित हो चुका है तो उसको कैसे मदद की जाए, डिएडिक्शन सेंटर्स कहाँ पर है, काउंसलिंग सेंटर्स कहाँ पर है। माय भारत जो कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आज की तारीख में 3 करोड़ से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं। नेशनल सर्विस स्कीम जो NSS है उसमें आज हमारे पास करीब 40 लाख वॉलंटियर्स हैं। तो ये वॉलंटियर्स जो हैं ऑलरेडी कम्युनिटी सर्विस का काम कर रहे हैं और अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो इनको भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का जो नशा मुक्ति मित्र है उसमें ये लोग एनरोल करें, और ये लोग कर भी रहे हैं। 18,000 से ज़्यादा हमारे वॉलंटियर्स उसमें रजिस्टर कर चुके हैं, और इसके अलावा हमारी पहुँच जो है वो कम से कम 30,000 इंस्टीट्यूशंस तक है। तो ये पूरे नेटवर्क को भी हम उनके सपोर्ट के लिए ला रहे हैं, पर इस पूरे में हमारा प्रयास ये है कि हम जो कार्य वो कर रहे हैं उसमें उनको सप्लीमेंट करें, ना कि उसको डुप्लीकेट करें।
0: तो इस तरह की सामाजिक चुनौती का समाधान जब हम देखते हैं तो अकेले सरकार का कार्यक्रम नहीं हो सकता, इसमें गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज संगठन, आध्यात्मिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान, उद्योग जगत, खेल निकाय और अन्य सामुदायिक

0: संगठन नशा मुक्त भारत आंदोलन में सार्थक भागीदार किस प्रकार बन सकते हैं?
1: आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें सभी को मिलकर कार्य करना है। तो हमने जैसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 125 से ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस होते हैं, जैसे CII है, फिक्की है, SOCHM है, ये भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। फिर जैसा कि जो मैंने बताया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनके जो एसोसिएशंस हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के हैं, जैसे CIPU बोलते हैं, FC बोलते हैं, AIU बोलते हैं, ये सब भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये हम जो कोशिश कर रहे हैं होल ऑफ प्रॉब्लम अप्रोच, जो पूरी ये समस्या है इसको जड़ से लेकर के पत्ती तक इसको ख़त्म करना है। तो इन सभी लोगों को हमने अपनी यात्रा में शामिल किया है और हम सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं।
0: तो जड़ से लेकर पत्ती तक इस समस्या का समूल जो विनाश है, हम चाहते हैं कि हमारे लिसनर सुन रहे हैं आज इस कार्यक्रम को, ये करें और इसमें भागीदार बने। लेकिन उससे पहले लेते हैं हम ही छोटा सा ब्रेक।

0: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज हमारे साथ जुड़े हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी. और हमारे कार्यक्रम का विषय है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत. युवाओं को मादक पदार्थों के दुरुपयोग से रोकने में माता पिता, शिक्षक, युवा नेताओं और सहपाठियों की क्या भूमिका हो सकती है? क्या रोकथाम को केवल कभी कभार चलाए जाने वाले जागरूकता अभियानों तक सीमित रखने के बजाय युवा विकास की दैनिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा सकता है?
1: ये बात सही है और हमने भी हमारी सोच भी यही है कि ये एक इवेंट नहीं है और न ही ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं. ये पूरा जो एक समाज की जो सोच है उसमें बदलाव लाने की एक प्रक्रिया है. इसीलिए हर एक पहलू पे ध्यान दिया जा रहा है और जो लोग समाज को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं, ताकत रखते हैं, वो सभी इसमें इन्वॉल्व है. सबसे पहला उदाहरण तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ही दूंगा, जिन्होंने ये उद्देश्य हमारे सामने रखा है कि यदि हमें विकसित भारत बनना है तो हमें नशा मुक्त होना होगा. तो वो खुद एक सबसे बड़े आइकॉन हैं हमारे देश में. इसके अलावा जो भी प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं हम सभी को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में अच्छा रसूख रखते हैं, उन सभी को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है. इसके अलावा जो हमारी खुद की प्रक्रिया है वो भी युवाओं में से जो उनके अच्छे आइकन्स हैं, यूथ आइकन्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करती है. क्योंकि हम यूथ पार्लियामेंट करके कार्यक्रम चलाते हैं जो कि जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर होता है. इसके अलावा हम लोग का विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग होता है जो कि बहुत बड़ा इवेंट है. अगेन वो भी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक आता है और स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस 12 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए 10, 11 और 12 को इसको भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाता है. और 12 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इसमें शामिल होते हैं और पिछले दो कार्यक्रमों में उनने कम से कम 6-7 घंटे पूरे दिन में जो है इसको दिए हैं. तो इससे भी इन सभी सफल लोगों का उदाहरण देकर हम मोटिवेट करते हैं कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करो, नेगेटिवली नहीं.
0: जी, ऊर्जा को जो है सकारात्मकता की तरफ बहाया जाए, ना कि नकारात्मकता की तरफ. तो अगला प्रश्न हमारा यही है आपसे कि युवा कार्य विभाग के पास स्वयं सेवा और सामुदायिक सहभागिता का एक विशिष्ट तंत्र है. ये सकारात्मक अवसर युवाओं में विपरीत परिस्थितियों से निपटने की क्षमता को सुदृढ़ करने तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग के स्थान पर रचनात्मक विकल्प उपलब्ध कराने में किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं?
1: देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा. जो युवा है वो क्या ढूंढता है जिंदगी में? वो एक पर्पस ढूंढता है. उसको एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होनी चाहिए. उसको अपॉर्चुनिटी की खोज रहती है और वो चाहता है कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके. ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी उसको मिले जिसमें कि वो कंट्रीब्यूट कर सके. तो जो हमारे जो कार्यक्रम हैं, हम मेन वॉलंटियरिज्म पे हमारे कार्यक्रम जो हैं आधारित हैं. तो माय भारत जो है तो उसमें तो राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति हमारे से जुड़ सकता है. और जैसा मैंने आपको बताया, हमें खुशी है कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं. फिर हमारा जो NSS स्कीम है उसमें 40 लाख से ज़्यादा बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं. और इसके अलावा हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन स्काउट्स एंड गाइड्स का भी है. तो ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इन तीनों बातों का ध्यान रखते हैं. उनको एक पर्पस प्रोवाइड करते हैं, बिलोंगिंगनेस का फीलिंग देते हैं और कंट्रीब्यूशन करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं. तो इस तरीके से जो उनकी एनर्जी है उसको हम पॉजिटिवली चैनलाइज करते हैं.
0: जी, पॉजिटिवली चैनलाइज कर रहे हैं एनर्जी को युवाओं की और युवाओं को मदद कर रहे हैं उनकी लाइफ का पर्पस ढूंढने में. माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश प्रसारित करने के लिए संगीत, नारों, नुक्कड़ नाटकों और डिजिटल सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है. माय भारत युवाओं की रचनात्मकता और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किस प्रकार कर रहा है ताकि ये संदेश युवा वर्ग तक उनकी ही भाषा में पहुंचाना सरल हो सके?
1: जैसा कि आपने बताया,

माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30 अगस्त के मन की बात में ये उल्लेख किया था कि नशा मुक्त युवा हैशटैग जो है उस पर युवा जो हैं वो कोई स्लोगन भेज सकते हैं, कोई अपना नाटक नुक्कड़ नाटक टाइप कर सकते हैं, या फिर कुछ निबंध भी लिख सकते हैं, या स्लोगन बनाएं, जो भी गाना बनाएं, फोक सॉन्ग बनाएं, इसका उन्होंने आह्वान किया था। तो उसी दिशा में हम लोगों ने हमारा जो माई भारत पोर्टल है उस पर 4 प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं, जो कि 12 सितंबर से शुरू हुई, जो पहली जो प्रतियोगिता हुई है। इसमें हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी स्लोगन्स और स्ट्रीट प्ले और निबंध और फोक सॉन्ग्स इसमें आए हैं, और

0: और इस चीज का उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से 27 सितंबर को भी किया था कि ऑलरेडी जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने जो अर्ज किया था, उसको युवाओं ने बहुत अच्छे से लिया है और नशा मुक्त युवा के हैशटैग पर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आ रही हैं और वे जोर शोर से इसमें भाग ले रहे हैं। तो बेसिकली इस सब का उद्देश्य जो है वो ये है कि युवा जो है केवल मैसेज रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं के पॉजिटिव मैसेजेस अलग अलग तरीकों से बना भी रहे हैं और प्रसारित भी कर रहे हैं।
1: तो जो चैनल है वार्तालाप का, वो द्विगामी है, यानी कि आप मैसेज रिसीव भी कर रहे हैं, आप मैसेज भेज भी रहे हैं युवाओं की तरफ, संदेश दोनों तरफ से बरकरार है। तो ये हम अपने लिसनर्स से अपील करना चाहेंगे इसी माध्यम से कि यदि आपकी भी कोई कंटेंट है, कोई सामग्री है जो कि आपको लगता है कि इससे संबंधित है और आप उसे भेजना चाहते हैं, तो आप हैशटैग नशा मुक्त युवा पर उसको भेज सकते हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: स्वास्थ्य, फिटनेस, जीवन कौशल, स्वयं सेवा और सामुदायिक सहभागिता से जुड़े एकीकृत दृष्टिकोण को इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हुए हम देखेंगे जल्द ही।
1: बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया और पहले हमारी चर्चा भी हुई कि ये जो हमने कार्यक्रम बनाया है ये 100 सप्ताह का कार्यक्रम है, तो इसको हमने 4 थीम्स में बांटा है, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, रिकवर, लीड। तो बिल्कुल ये सारे टॉपिक्स इसमें लिए जाएंगे। जैसे अभी पिछले हफ्ते जो हमने उसमें किया वो था माय हेल्थ माय प्राइड, फिट यूथ पे भी हम जाएंगे, एडिक्शन फ्री यूथ पे, लाइफ स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे, जो हमारे देश की जो संस्कृति है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कई चीज़ों के विषय में हम इन 100 सप्ताह में बात करेंगे और उनको इन्वॉल्व करेंगे।
0: जी सर, सरकार नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत डिजिटल निगरानी और संस्थागत समन्वय को सुदृढ़ कर रही है। प्रौद्योगिकी और आंकड़े अभियान की पहुंच के मापन से आगे बढ़कर हम ये कैसे जान सकते हैं कि अभियान सिर्फ लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है बल्कि इसका सच में कोई गहरा असर भी हो रहा है? इसके प्रभाव का आकलन किस प्रकार से किया जा सकता है?
1: ये बिल्कुल सही है कि जब भी हम कुछ योजना चलाते हैं, कोई कैंपेन चलाते हैं, तो ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, आवश्यक भी है कि उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, जो टारगेट हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इसके हमारे पास कई तरीके हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास जो हमारा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है उनके कई डी एडिक्शन सेंटर्स वगैरह हैं, काउंसलिंग सेंटर्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर कितने लोग सहायता के लिए पहुँच रहे हैं। तो ज़रूर जब हम ये कैंपेन चलाएंगे तो वो नंबर बढ़ेगा पहले, क्योंकि उनमें जागरूकता आएगी, फिर धीरे धीरे अगर ये कैंपेन प्रभावी होगी तो जो लोग ड्रग ले रहे हैं उनका नंबर भी कम होना चाहिए, तो उसमें हम वो परिवर्तन देखेंगे। दूसरा जो है, जैसा कि आप जानते हैं, जो अल्कोहल का जो ऑफटेक है उसको भी हम लोग देख सकते हैं कि उस पर किस तरह से चेंज आ रहा है। और इसी तरीके से जो सरकार का जो फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, तो जो पिछले आंकड़े मैंने आपको बताए थे कि अल्कोहल से कितने प्रभावित हैं, ड्रग्स से कितने प्रभावित हैं, तो ये जो है वो फैमिली हेल्थ सर्वे से आया था। तो उस तरह के सर्वे से भी हमें जानकारी मिलेगी कि हमारी जो एफर्ट्स हैं, जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उनका धरातल पर कितना प्रभाव पड़ा है।
0: जी, धरातल पर प्रभाव क्या है ये जान रहे हैं। फीडबैक के माध्यम से इस सिस्टम को और अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसी दिशा में हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये म्यूजिकल ब्रेक।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज के हमारे अतिथि हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी, और हमारा आज का विषय है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। हाल की नशा मुक्त युवा गतिविधियों में स्वास्थ्य, जागरूकता और निवारक उपायों को एक साथ जोड़ा गया है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज के हमारे अतिथि हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी, और आज का हमारा विषय है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। सर, आपसे अगला प्रश्न हमारा ये होगा कि सरकार ये कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि नशा मुक्त युवा अभियान से उत्पन्न प्रगति 100 सप्ताह की अवधि के बाद भी बनी रहे और ये एक सतत युवा एवं सामुदायिक आंदोलन का रूप ले, यानी कि कॉन्टिन्यूटी में चलता रहे इवन आफ्टर द अभियान।
1: ये बिल्कुल सही है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक इवेंट नहीं है, सीरीज ऑफ इवेंट नहीं है, ये ऐसा प्रयास है जिसमें हम चाहते हैं कि पूरा मानस बदल जाए, पूरी सोच बदल जाए। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि कोई भी आदत को एकदम डीपली इनग्रेन होने में, उसको हमारी आइडेंटिटी में समाहित होने में 100 सप्ताह का टाइम लगता है, लेकिन लोग बदलते जाएंगे, नए युवा इसमें जुड़ते जाएंगे। तो इस कारण से ये ज़रूरी है कि न केवल हम इसका आकलन करें बल्कि हम किसी न किसी रूप में इसको आगे चलाते रहें। तो जो हमारे जो वॉलंटियर कार्यक्रम माय भारत है और जो NSS स्कीम है, तो उसमें हम कई थीम्स पे काम करते हैं। तो उन थीम्स में हम इसको एक महत्वपूर्ण स्थान देंगे जिससे कि लगातार इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बनी रहे। और ये जो विभागों का जो कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ है, इसको भी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दे दिया गया है। माननीय गृह मंत्री जी के चेयरपर्सनशिप में एक कमिटी है NCOD, तो ये एक स्ट्रक्चर जो है ये आगे भी लगातार चलता रहेगा, काम करता रहेगा। विभाग आपस में समन्वय करते रहेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि ये जो समस्या है ये हमारे राष्ट्र में, न केवल हम इसको जड़ से उखाड़ फेंकें बल्कि ये वापस पनप न पाए।
0: अगर कोई परिवार या युवा अपने आसपास नशे की बिक्री देखता है या खुद मदद चाहता है तो वो सरकार से कैसे संपर्क कर

0: सकता है? क्या इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर या पोर्टल बनाया गया है?
1: सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री का एक डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर है 1-4-4-4-6-1-444-6। तो यदि कोई भी सहायता चाहता है तो वो इस नंबर को डायल करके प्राप्त कर सकता है।
0: इस अभियान को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में प्रशासनिक स्तर पर राज्यों या स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बिठाने में क्या कुछ चुनौतियां आपने देखी हैं, और मंत्रालय यदि उनका कोई समाधान कर रहा है तो उसके बारे में आप हमें अवगत कराएं?
1: जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इस प्रयास में हम सभी एकजुट हैं, और हम जानते हैं कि भारत जो है इस मामले में थोड़ा ज्योग्राफिकली एक डिसएडवांटेज पोजीशन में है, क्योंकि हमारे पश्चिम में जो है वो गोल्डन क्रेसेंट है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, जहाँ की इसका प्रोडक्शन काफ़ी होता है, और इसी तरह से हमारे पूरब में जो है वो गोल्डन ट्रायंगल है, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, तो उसके बीच में हम पड़ते हैं। तो जो इस तरफ के जो राज्य हैं उनमें नेचुरली इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर या पंजाब, हिमाचल इस तरफ, फिर श्रीलंका की तरफ जैसे तमिलनाडु वगैरह है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये सारी राज्य सरकारें, सभी राज्य सरकारें और खासकर ये राज्य सरकारें इसमें पूरा सहयोग केंद्र के साथ कर रही हैं, और हम सब इसमें एकजुट हैं। जैसा मैंने आपको एनकॉर्ड बताया कि ये जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर माननीय गृह मंत्री जी के चेयरपर्सनशिप में है, तो इसी तरह से हर राज्य के चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की इस तरह की एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं, तो उसमें जो सारे कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं वो एड्रेस कर लिए जाते हैं। तो इसमें सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और हम जरूर इसमें सफल होंगे।
0: भारत के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर? और एक सामान्य नागरिक परिवार, शैक्षणिक संस्थान या सामुदायिक संगठन नशा मुक्त भारत के राष्ट्रीय संकल्प में योगदान देने के लिए क्या कर सकता है?
1: जैसा हमेशा होता है कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम सभी साथ में हैं, और यदि प्रत्येक व्यक्ति खुद पे ध्यान देगा तो अपने आप जो हमारा गोल है वो हम अचीव कर लेंगे। मेरा हमारे राष्ट्र के युवाओं के लिए संदेश ये रहेगा कि जो ये जीवन है ये एक भगवान की गिफ्ट है, ये जीवन एक जिम्मेदारी भी है और एक जरिया भी, ये विरासत भी है और नज़रिया भी, इसे व्यर्थ न जाने दें, इसे जिएं, स्वयं को जानें, इसकी कमान खुद संभालें और खुद को उपहार दें उस जीवन का जिसे आप जीना चाहते हैं, जिसके आप योग्य हैं। अगर इंग्लिश में बहुत शॉर्ट में कहूँगा, लीड योर सेल्फ टू द लाइफ यू डिजर्व। बेस्ट विशेस, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: श्री सुनील पालीवाल सर, आज आपने हमारे देश के करोड़ों युवाओं को जो संदेश दिया है और जिस तरह सरकार के प्रयासों व योजनाओं के बारे में आपने बताया है, वो वाकई प्रेरणादायक है। युवाओं को खेल, कला और सकारात्मक कार्यों से जोड़कर ही हम नशे के इस जाल को तोड़ सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने और अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इस अवसर के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी।
0: इसी के साथ कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: and mission. 50 years ago, a small seed was planted with a noble dream as the first Hindu Vidyalaya. Today, we have grown into a magnificent banyan tree, deeply rooted in Indian culture, ethos, discipline, and patriotic fervor, seamlessly blending with modern education, technology, and innovation. As we march toward Viksit Bharat at 2047, this national vision becomes a personal responsibility for our students who are the true nation builders. 50 years behind us fill us with pride. 50 years ahead, full of purpose. And in the words of Swami Vivekananda, arise, awake, and sleep not till the goal is reached. And when which insists on to work tirelessly towards the upliftment of our society, importance on education, character building, and selfless service. This philosophy of Swami Vivekananda is a blend of ancient spiritual wisdom and modern scientific thought, inspiring generation to strive for excellence. I do not find words to say my thank you in few words, but very with my heart moving gratitude, I once again welcome our Prime Minister. Thank you so much. Swagatam, suswagatam, Jai Hind.
1: एक बीच से विराट वृक्ष बनी कहानी, अ शॉर्ट फिल्म ऑन द जर्नी ऑफ हिंदू विद्यालय ऑन एलईडी.
2: नमस्ते, वेलकम टू जयगोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय.
3: विश्व हिंदू विद्या केंद्र अपनी स्थापना के 50 वर्ष मना रहा है. 1975 में स्वामी जयेंद्र सरस्वती की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई. उद्देश्य भारतीय मूल्यों और धरोहरों के प्रति सम्मान और स्नेह की अटूट परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना. आज तमिलनाडु में इसकी 15 ब्रांच चेन्नई, नागरकोइल, कन्याकुमारी, रामेश्वरम और शिवकुंदम में संचालित हैं, जो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा दे रही हैं. वहीं प्रधानमंत्री मोदी का तमिल भाषा और तमिल संस्कृति के प्रति विशेष आग्रह रहा है. वे तमिल संस्कृति को विश्व की अमूल्य धरोहर मानते हैं, जिसे उन्होंने अपने जनप्रिय कार्यक्रम मन की बात से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा व्यक्त किया है.
4: हमें गर्व है कि दुनिया की सबसे पुरातन भाषा हमारी तमिल भाषा है.
3: राष्ट्र के प्रति दायित्व, समाज के प्रति कर्तव्य और मानवता के प्रति समर्पण, इन्हीं मूल्यों को विकसित करता है विश्व हिंदू विद्या केंद्र. राष्ट्र निर्माण की दिशा में विश्व हिंदू विद्या केंद्र बच्चों तक किफायती आधुनिक शिक्षा का प्रकाश पहुंचाता है. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सभी तक शिक्षा पहुंचाने का संकल्प समाहित है. इसलिए मातृभाषा में उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम उपलब्ध हो, इसे सुनिश्चित किया गया है.
4: द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू प्रमोटिंग इंडियन लैंग्वेजेस. हमने तमिल जैसी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए मातृभाषा में हायर एजुकेशन का विकल्प भी युवाओं को दिया है.
3: नए संकल्पों, नए लक्ष्यों के साथ जब देश तेज गति से विकास कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के संकल्पों से प्रेरणा लेकर विश्व हिंदू विद्या केंद्र शिक्षित, कुशल और दक्ष युवाओं को भविष्य के कर्णधार के रूप में तैयार कर रहा है. देश सेवा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ विश्व हिंदू विद्या केंद्र की ये यात्रा अनवरत जारी है.
1: The three iconic moments which are going to take place in the annals of Hindu Vidyalaya is going to happen right now with humble pranam.

0: तमिलनाडु के राज्यपाल श्री राजेंद्र हार्लेकर जी, डॉक्टर एल मुरुगन जी, थिरु राजमोहन जी, थिरु नयनान नागेंद्रन जी, डॉक्टर गिरिजा शेषाद्री अम्मा जी, थिरु आर आर गोपाल जी, मेरे युवा साथियों, शिक्षकों और अभिभावकों, एंदु तमिल सहोदर सहोदरी गणे वणक्कम।
1: தமிழ்நாட்டின் ஆளுநர் ராஜேந்திர ஹார்லேக்கர் அவர்களே, டாக்டர் எல் முருகன் அவர்களே, ராஜ்மோகன் அவர்களே, நயனார் நாகேந்திரன் அவர்களே, டாக்டர் கிரிஜா சேஷாத்ரி அவர்களே, ஆர் ஆர் கோபால்ஜி அவர்களே, எனது இளைய நண்பர்களே, ஆசிரியர்களே, காப்பாளர்களே, சென்னையிலே இன்று உங்கள் அனைவர் மத்தியிலும் வந்திருப்பதற்கு நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். எனது தமிழ் சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம்.
0: நண்பர்களே, ஆஜ் நவராத்திரி கா பிரதம் தின், சிவ் ஔர் சக்தி கி பவித்ர தர்த்தி தமிழ்நாடு ஆனே கா யே சௌபாக்ய और मां सरस्वती के साधकों से मिलने का यह अवसर मेरे लिए नवरात्रि का ये अद्भुत शुभारंभ है। मैं मेरे युवा साथियों का ये उत्साह भी देख रहा हूं। ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये जो एक्साइटमेंट है, मैं उसे महसूस कर रहा हूं। मुझे आप सबकी आंखों में

और देश इसलिए देश भी ये इंश्योर कर रहा है कि स्पोर्ट्स केवल एंटरटेनमेंट तक सीमित न रहे। इसलिए आज भारत में खेलों के लिए नई सुविधाएं बन रही हैं, युवा खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग और सपोर्ट मिल रहा है और इंटरनेशनल सपोर्ट में भारत का कद भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का कद भी बढ़ रहा है। நண்பர்களே,

0: Good evening, listeners. Welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking your calls on mutual fund related queries. But do remember that we do not address fund specific queries. To call us, you can connect on the numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Along with Subodh Mishra, I am Sarabjit Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. ख्याल रखें, हम किसी ख़ास म्यूचुअल फंड से संबंधित सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. श्रोता, इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी. आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी, धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: In domestic bullion market, gold and silver prices end on mixed note last week. Foreign portfolio investors sell equities worth over 45,000 crore rupees on stock exchanges, infuse more than 900 crore rupees through primary market in October so far. And domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings and geopolitical developments for Qs next week.
1: देश के सर्राफा बाजार में पिछले हफ्ते सोने और चांदी में मिला जुला रुख. अक्टूबर में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने स्टॉक एक्सचेंज में 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे. प्राथमिक बाजार में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया. और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों की आमदनी और वैश्विक घटनाओं पर.
0: And before we begin with the program, here is a disclaimer. Once again, want to remind our listeners that we do not address any specific fund-related queries. And besides that, the views given by the experts are of their own and not those of Akashvani. Akashvani does not endorse any of the views expressed by the experts present here.
1: और खबरों का सिलसिला शुरू करें हम. पिछले हफ्ते भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मिला जुला रुख बना रहा. एमसीएक्स में दिसंबर अनुबंध का सोना वायदा पिछले हफ्ते 0.7% बढ़कर 151,499 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. दिसंबर अनुबंध की चांदी मामूली गिरावट के साथ 2,25,755 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. कॉमेक्स में दिसंबर अनुबंध का सोना 1.3% बढ़कर $4,216.30 प्रति ट्रॉय आउंस पर रहा. दिसंबर अनुबंध की चांदी 1% बढ़कर $61.05 प्रति ट्रॉय आउंस पर आ गई. और हम अभी सोने और चांदी में तो उतार चढ़ाव देख ही रहे हैं. शेयर बाज़ार का हाल भी हम देख रहे हैं आकार, कि कैसा चल रहा है. और अंदाज़ा लगाना तो वैसे भी मुश्किल है और लगाना भी नहीं चाहिए, लेकिन इन हालात में अभी जो क्योंकि हमारे बहुत सारे निवेशक, बहुत सारे कॉलर्स जो आते हैं, बहुत छोटी जगहों से आते हैं और छोटी रकम से शुरुआत कर रहे होते हैं, अभी म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में कदम रख रहे होते हैं, ऐसे लोग इन हालात में क्या करें. अभी जब काफ़ी हमें दिखता है कि काफ़ी ऊपर हो रहा है या नीचे जा रहा है, ऐसी स्थिति में वो काफ़ी

0: डर जाते हैं कई बार।
1: जी बिल्कुल, जब भी आपका एक हार्ड अर्न्ड मनी लगा होता है और मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ जब आप उसकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को नीचे जाते हुए देखते हैं तो डरना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन इस वक्त बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है कि जो निवेशक है वो घबराए नहीं, वो पैनिक ना हो, और साथ ही में ध्यान रखे असेट एलोकेशन का अपना। उनको अपना जो उनका इन्वेस्टमेंट प्लान है उस पर डटे रहना है, और उनको ये चीज़ एकदम ध्यान में रखनी है कि भले ही अगर मार्केट अभी बीच में नीचे जा रही है, वोलेटिलिटी आ रही है, तो ये जो सारी फ्लक्चुएशंस है ये शॉर्ट टर्म में होती है। इक्विटी में पैसा हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जाता है, 5 साल या उससे ज़्यादा सालों के लिए, और आमतौर पर देखा गया कि जितना ज़्यादा सालों तक आप अपना पैसा इन्वेस्टेड रखते हैं तो वहाँ पे इन फ्लक्चुएशंस का जो असर है, जो वोलेटिलिटी का असर है, वो बहुत ही मामूली सा रह जाता है और आपको एक अच्छा इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिलता है एक नॉर्मल किसी भी और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से। तो निवेशकों को इस वक्त जो करना चाहिए वो सबसे पहले तो है कि घबराए नहीं, डरे नहीं, और साथ में ये अच्छे से कंफर्म कर ले कि जो उनका पैसा इक्विटीज़ में निवेशित है, जो इन्वेस्ट करा हुआ है, वो उनका लॉन्ग टर्म मनी है जो उनको 5 साल तक नहीं चाहिए होगा। साथ ही में अपने असेट एलोकेशन का ध्यान रखें।
0: और जैसे आपने ये बताया कि चलिए बाजार में बने रहें, निवेशित रहें हम, तो जो पैसा हमने अभी इससे पहले लगा दिया है वो तो चलिए लगा रहने देंगे हम।
1: हाँ जी,
0: क्या इस समय हमें नया निवेश अपना जारी रखना चाहिए?
1: जी बिल्कुल, निवेश जारी रखिए, बट वहाँ पे कभी हल्का सा भी इस हिसाब से निवेश ना करिए कि हाँ अभी मार्केट नीचे है और ऊपर जल्दी जाएगा और मैं जल्दी कुछ पैसे कमा लूँगा। लॉन्ग टर्म का जो आपका पैसा है जो आपको 5 साल के बाद चाहिए उसको ज़रूर निवेश करें। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा समय है अपना नया पैसा निवेश करने के लिए, क्योंकि इस वक्त मार्केट जब नीचे जाता है तो आप सस्ते में खरीदते हैं।
2: So Akar, I've also been listening to you very carefully, and you know, risk, discipline, long-term wealth creation, there's lots that comes in the kitty of investment through mutual funds. We'll come back to this discussion. First, let's hear what our first caller has to ask from us. Keshav ji, swagat hai aapka, sawal poochhe.
3: Ji, namaskar, main ye puchna chahta hu sir se ki jaise ki hum mutual fund mein jankari nahi rakh pate, hum bank ke khatiyon mein hi invest karte, तो ऐसा कोई तरीका है जो म्यूचुअल फंड में भी जा सके, और एक साल के लिए अगर हम म्यूचुअल फंड में जाना चाहें तो किस ढंग से जा सकेंगे? 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें एक साथ। तो दूसरा अगर ये है कि अगर हम गोल्ड खरीदते हैं और उसको खरीदने में तो आसानी होती है, गोल्ड को आसानी से सेल भी हो सकता है, होता है जो शॉप होती है वो आसानी से ले लेती है, ये कन्फ्यूज।
1: किशोर जी, जो आपका पहला सवाल था कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए, देखिए म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं और अलग अलग समय के अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से स्कीम्स उसमें बनी हुई है। उसमें कहीं अराउंड 1500 ओपन एंड स्कीम्स है जो बनी हुई है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो आपकी ज़रूरत है, जो आपका एक गोल का होराइजन है, जितने समय के लिए आप पैसों का निवेश करना चाहते हो और जो आपका रिस्क एपेटाइट है, आप उसके हिसाब से सही तरीके का म्यूचुअल फंड चुने। आपने बीच में मेंशन किया कि आप एक साल के लिए पैसे निवेश करना चाहते हैं, एक साल के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में बिल्कुल निवेश नहीं कीजिएगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में कम से कम आपका होराइजन 5 साल का होना चाहिए। एक साल के लिए मेरी समझ में एक लिक्विड फंड सही रहेगा। लिक्विड फंड एक तरीके का डेट फंड होता है जिसमें जो आपका पैसा है वो ज़्यादातर ऐसी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में या ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगाया जाता है जिनकी मैच्योरिटी केवल 91 डेज के अंदर होती है। इसमें आपको एक एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा रुपया भी मिलेगा और इसमें वोलेटिलिटी भी कम रहेगी, और साथ ही में जो सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है डेट म्यूचुअल फंड के साथ, यहाँ पे आपको कोई एक समय पक्का नहीं करना पड़ेगा। अगर जैसे कुछ भी ऐसा है कि आप एकदम श्योर नहीं है कि आपको जो टेन्योर है, जैसे एफडी में आपको टेन्योर एकदम गारंटीड तरीके से बताना पड़ता है कि 1 साल, 6 महीने, 15 महीने, और अगर आप उस तय किए समय से पहले बाहर पैसा निकालते हैं तो फिर वहाँ पर आपको पेनल्टी भी लग जाती है। वही चीज़ आपको म्यूचुअल फंड्स में नहीं होगी, आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको एक गारंटेड रिटर्न चाहिए और आप समय के साथ एकदम पक्के हैं कि नहीं आपको 1 साल के बाद ही चाहिए, तो आप फिक्स डिपॉजिट का भी चुनाव कर सकते हैं। दूसरा

0: सवाल था आपको गोल्ड को लेकर के। देखिए, गोल्ड में निवेश करना चाहिए और पोर्टफोलियो का कहीं हद तक इसको आप 10 से 15% आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा निवेश नहीं करिएगा। और मेरी समझ में गोल्ड में निवेश करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए जाइए। फिजिकल गोल्ड में निवेश करने में जो दो तीन दिक्कतें रहती है वो ये रहती है कि सबसे पहले तो आपको उसको सिक्योरली रखने में दिक्कत रहेगी, एक सेफ लॉकर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप घर में रखते हैं तो एक वैसी ही चिंता रहेगी कि कभी कोई बाहर से आया है, कभी घर में काम हो रहा है तो कहीं इधर उधर ना हो जाए। और बैंक में रखेंगे, लॉकर की सहायता लेंगे तो वहाँ पे एक आपको अलग एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी। वहीं पे अगर आप इसको गोल्ड को ज्वेलरी के फॉर्म में लेते हैं, फिजिकल फॉर्म में, तो जब भी आप कभी इसको बेचने जाएंगे तो जो ज्वेलर है वो खरीद तो लेगा लेकिन वहाँ पे मेकिंग चार्जेस के नाम पे बहुत सारे कुछ चीज़ें होती है, मेकिंग चार्जेस और दूसरे कहीं पे टाका लगाए, कुछ लगाए, काफ़ी डिडक्शंस हो जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर रहेगा कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड का चुनाव करें। और गोल्ड म्यूचुअल फंड एकदम नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह होता है, इसमें आप SIP के ज़रिए भी निवेश कर सकते हैं, केवल 500 रुपये महीने से भी कर सकते हैं। और ये एक फिजिकल गोल्ड की वैल्यू को ही ट्रैक करेगा, जो एक ETF होता है वो फिजिकल गोल्ड की वैल्यू को ट्रैक करता है और एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड उस ETF में पैसे लगा सकता है।
1: जी, अगले कॉलर हैं जयपुर से दीपेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: हाँ सर, नमस्ते सर, थैंक यू सर। मेरा जिसमें सवाल है कि मैं दो म्यूचुअल फंड हाउस का लार्ज कैप फंड देख रहा था, तो एक ने 58 स्टॉक सेलेक्ट करके रखा और एक ने 28-30 स्टॉक करके रखा है, तो उसके बेस पे कोई सर मतलब है क्या कि कौन सा मतलब ठीक हो सकता है? कम स्टॉक है तो उसमें ज्यादा स्टॉक है तो लार्ज कैप फंड का
0: केवल इस वजह से कहना कि कौन सा फंड बढ़िया है, कौन सा कम अच्छा है, कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स है, ये मुमकिन नहीं रह पाएगा, क्योंकि मेन चीज़ इसमें डिपेंड करती है कि वो स्टॉक्स का जो चुनाव है वो कैसा है, वो पोर्टफोलियो कैसा है। बट हाँ, जो चीज़ आप बता रहे हो उससे मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ कि जो आपने बताया कि 28 स्टॉक वाला पोर्टफोलियो, उसका एक पोर्टफोलियो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पर जो पूरे पैसों का रिस्क है वो कंपैरेटिवली कम नंबर ऑफ स्टॉक्स में बटा हुआ है, ये फंड कंपैरेटिवली कम डाइवर्सिफाइड है, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होएगा दूसरे फंड से। अगर इसके स्टॉक्स ज़्यादा अच्छे चल पड़े, ज़्यादा जो फंड मैनेजर्स ने जिन स्टॉक्स का चुनाव किया है, अगर उन स्टॉक्स का चुनाव उनका ज़्यादा अच्छा चल पड़ा तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और वहीं पे अगर वो नहीं चले या उनमें से कोई से नीचे गया तो वहाँ पे वो नीचे भी थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे दूसरे के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी सी कम है, ये एक फोकस्ड फंड है जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में जिसने निवेश किया है।
1: और चलिए देखते हैं कि FPI का क्या रुख है इस महीने। अब तक अक्टूबर में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 44,166 करोड़ रुपए निकाले। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 45,126 करोड़ रुपए भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में बिकवाली के जरिए निकाले गए। वैश्विक अनिश्चितता, US बॉन्ड्स यील्ड्स में बढ़ोतरी और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से निवेशकों ने जोखिम से दूरी बनाए रखी, लेकिन प्राथमिक बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने निवेश जारी रखा है। अक्टूबर में अब तक उन्होंने प्राथमिक बाजार में 960 करोड़ रुपये का निवेश किया। ऋण बाजार में इस महीने अब तक विदेशी निवेशकों का रुख मिला जुला है। अक्टूबर में अब तक जनरल लिमिट रूट से 4,729 करोड़ रुपए डाले हैं, इसके उलट FAR से उन्होंने 1,921 करोड़ रुपए और VRR से 233 करोड़ रुपए निकाले हैं।
3: और हितेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ लखनऊ से। हितेश जी स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग मार्केट मंत्री एंड सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड में क्या डिफरेंस है, और अगर मुझे अभी न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है फॉर नेक्स्ट 10 to 15 years के लिए, तो इनमें से कौन से फंड में मैं इन्वेस्ट करूं? थैंक यू।
0: जो हितेश जी, जो वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड है, ये दोनों एक अलग अलग प्रकार की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ है, मतलब ऐसे फंड्स हैं जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करते हैं। अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ तो जो वैल्यू फंड है ये ज़्यादातर उन स्टॉक्स में निवेश करेगा जो कि उस फंड मैनेजर की समझ में अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ते में मिल रहे हैं, जो कि जो फंड मैनेजर है जो स्टॉक्स का चुनाव कर रहे हैं उनको लगता है कि ये वाले स्टॉक्स की वैल्यू उनके अभी आज के मार्केट प्राइस से कहीं ज़्यादा है और आगे आने

0: में वो बेहतर करेंगे। तो जैसे कोई चीज़ होती है ना, हमको लगता है कि अच्छी चीज़ है और सस्ते में मिल रही है, तो एक तरीके से वैल्यू फंड का जो एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, हम उस तरीके से कह सकते हैं। और वहीं पे जो कॉन्ट्रा फंड है, वो थोड़ा सा जो मार्केट से एक अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जो अलग स्टॉक्स चल रहे होते हैं जो नॉर्मली बाकी के फंड्स इनमें नहीं करते, वो वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, उन स्टॉक्स में निवेश करते हैं। इन दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा के लिए मैं कहूँगा कि देखिए, आप थोड़ा थोड़ा पैसा दोनों में ही लगा सकते हैं। एक जो इक्विटी पोर्टफोलियो होता है, उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ को भी डाइवर्सिफाई कर देते तो अच्छा रहता है। आप जो भी आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है, जो आपका फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो है, उसका टोटल जो पैसा है, उसका कुछ 20-25% पैसे को आप इन दोनों में थोड़ा थोड़ा बांट सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल में डाइवर्सिफिकेशन लाना बेहतर रहेगा। कभी होता है कि एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल चलता है तो दूसरा नीचे रहता है, तो वहाँ पे आपके लिए रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा।
1: All right, let's turn our attention to the market regulator. SEBI is expected to issue guidelines on determining derivative settlement prices on expiry days within a week. Chairman Tuhin Kanta Pandey said the regulator is examining around 20,000 public comments received on its consultation paper on the closing auction session mechanism. The proposed changes aim to address concerns over the impact of closing prices on derivative settlement. Mr. Pandey said SEBI is also reviewing regulations governing depositories and participants to simplify compliance and strengthen fraud prevention. He added that changes to clearing arrangements for certain transactions, including share buybacks and tender offers, are targeted for implementation by the end of November. Meanwhile, SEBI is also working to simplify digital onboarding for overseas investors and strengthen cybersecurity, disaster recovery and business continuity across market infrastructure institutions. Mr. Pandey said guidelines on the responsible use of artificial intelligence and machine learning will be issued shortly, with safeguards including clear accountability, data controls and human oversight. Akar, we'd like to have your opinion on this. How do these guidelines, are they aiming to have more transparency and fairness in the derivative market?
0: Yes, seems like. Yeah, definitely. I mean, the government is, the regulators are trying to, you know, make the things much better for the investors.
1: All right. जी.
2: और अभी एक कॉलर का सवाल मुझे याद आ गया और मुझे लगा कि शायद उस पर एक और चीज़ जोड़ दूँ मैं, जो एक साल के लिए निवेश की बात कर रहे थे कि एक 10 लाख रुपये अगर मुझे एक साल के लिए लगाने हैं, और आपने लास्ट में कहा कि FD, क्योंकि अभी बैंक रेट बढ़े हैं अभी, हालांकि वो देखते हैं हम ग्राहकों तक उसकी मतलब उसका असर पहुंचता कब है और कब हमें FD के बढ़े हुए रेट मिलते हैं, तब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हम पैसे कहाँ रखें।
0: हाँ जी, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा उसमें जाएगा, क्योंकि अब आज की तारीख में जो टैक्स रेट है वो दोनों चीज़ों पे सेम है
2: जी।
0: FD का जो इंटरेस्ट है वो भी आपकी एनुअल इनकम में ही ऐड होकर टैक्स होता है, और जो लिक्विड फंड में जो आपके गेन्स होते हैं वो भी आपके एनुअल इनकम में रहता है, ऐड होकर लगता है। बट यहाँ पे जो एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जहाँ पे मेरे को लगता है कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो एक स्टेप ऊपर है, एक एडवांटेज पे है, वो ये है कि जैसे यहाँ तो केवल एक साल की बात थी, लेकिन अगर कहीं पे होता है कि आपका कुछ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मनी है फिक्स्ड इनकम का, जैसे कि 2-3 साल का हो गया, वहाँ पे आपको हर साल टैक्स नहीं देना होएगा। FD में जो इंटरेस्ट है, भले ही आपको हर साल आपके अकाउंट में ना है, वो खाली अक्रू हो रहा है, मैच्योरिटी पे मिलेगा आपको, तब भी हर साल टैक्स देना है। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब आप बेचेंगे, आपको केवल तभी गेंस पे टैक्स देना है।
2: तो ये फायदा तो है
0: जी
2: म्यूचुअल फंड्स में आने,
0: बिल्कुल वो कंपाउंडिंग आपके लिए थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। और वहीं पे जैसे कि तब मैं उस वक्त बता रहा था कि आपको एक टाइम का कमिटमेंट नहीं देना पड़ता, जैसे कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हमको पता होता है कि हमारे एक इमरजेंसी का पैसा है, कुछ लाख रुपए जो हमने रखे, लेकिन हमको एग्जैक्टली कब यूज़ करने हमको नहीं पता। अगर हम FD में निवेश करते हैं तो हमको एक टाइम कमिटमेंट देनी पड़ती है, ऐसे कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, और अगर उससे पहले उनकी आवश्यकता पड़ती है, उनको निकालते हैं, तो इंटरेस्ट रेट पे एक पेनल्टी पड़ जाती है। बट म्यूचुअल फंड्स के केस में ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे पूरी लिक्विडिटी है, आप कभी भी उनको रिडीम कर सकते हैं।

0: थोड़ी अनिश्चितता है, लेकिन उसके साथ कुछ एडवांटेजेस भी
1: जी,
0: हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: आवर नेक्स्ट कॉलर जॉइन्स अस फ्रॉम मुंबई। सोमनाथ जी सवाल पूछें।
3: हेलो, हेलो सर।
2: हाँ जी सोमनाथ जी सवाल पूछें।
3: अभी का मार्केट कंडीशन में
2: प्लीज रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ योर रेडियो सेट। सोमनाथ जी आपकी आवाज एको कर रही है। जी बताएं।
3: हेलो
0: जी बताएं।
3: अभी का मार्केट कंडीशन में
0: जी लगता है उनकी लाइन पे कुछ गड़बड़ी है, कहीं कोई डिस्टरबेंस है, लेकिन हम इतना सुन पाए कि अभी के मार्केट कंडीशन में क्या होगा। और
1: तो सोमनाथ जी देखिए, आपका पूरा सवाल तो हम नहीं सुन पाए, लेकिन अभी जितना मैं आपको बता पाऊंगा कि जो मुझे लगता है कि आप पूछना चाह रहे थे कि इस मार्केट कंडीशन में कहाँ निवेश करना चाहिए, या फिर दूसरा हो सकता है कि आपके लिए अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए मार्केट का जो सिचुएशन रहता है ये रोज़ बदलता है, हर थोड़े दिनों में बदलता है। शॉर्ट टर्म में ये कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। जो इक्विटीज़ है, जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, इसका नेचर ही ऐसा है कि ये स्थिर नहीं रहता, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो और ये हमारे एक आम आदमी के कंट्रोल में भी नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे में एक निवेशक के लिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान दें जो हमारे कंट्रोल में है और उस हिसाब से हमारा निवेश प्लान करें। यहाँ पे सबसे पहले आते कि हमारे को पैसा कब चाहिए, हमारा जो गोल है, हमारा वो गोल क्या है, हमारे को कितने सालों में चाहिए, किस पर्पज़ के लिए हम लोग निवेश कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए जो लॉन्ग टर्म का है, और उस पर हमारे को डटे रहना है, उस पर स्टिक होके रहना है। बीच में घबराना नहीं है जब भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस आए, और हर थोड़े समय में साल में एक दफ़ा उसको प्लान को रिव्यू भी कर लेना चाहिए कि क्या हमारे को इस प्लान में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। कि जैसे अगर आप रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ रहे थे, अगर आप रिटायरमेंट के पास आ रहे हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। आपने जिन स्कीम्स में निवेश किया था क्या वो स्कीम्स अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उन्हीं में पैसा कंटिन्यू करे या ना करे, या बदलने की ज़रूरत है।
2: ऑल राइट, आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम महाराष्ट्र गुरुनाथ। गुरुनाथ जी स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
4: नमस्कार मैडम
2: जी। नमस्कार।
4: मैम सर से मेरा एक क्वेश्चन है, अभी मेरे पास इंस्टॉलमेंट समझो 2 लाख का, मतलब किस फंड में मुझे जाना चाहिए? एक साल के लिए, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है, शॉर्ट टर्म के लिए है, तो उसमें कम से कम रिस्क हो और कुछ अच्छा रिटर्न मिले, तो कुछ ऐसे फंडों के बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू।
1: गुरुनाथ जी, जो आपने मेरे को अपना होराइज़न बताया 1 लाख का, सॉरी 1 साल का, और 2 लाख का, 2 लाख रुपए आप निवेश करना चाहते हैं, तो मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका एक होराइज़न है वो फिक्स्ड है, आपकी जो नीड है वो फिक्स्ड है कि आपको 1 साल के बाद इस पैसे की आवश्यकता होगी। देखिए जब भी थोड़े समय के लिए पैसे लगाना हो ना, तो हमारी जो एक नीड होती है वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो रिटर्न कमाना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये रिटर्न हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो पैसा सिक्योर रहे, जिसको हम लोग प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल बोलते हैं, और साथ ही में एक ठीक ठाक, मतलब जो एक इन्फ्लेशन के आसपास का रिटर्न है वो मिल जाए, कि पैसा हमारा डिटोरिट भी ना हो। क्योंकि अगर आप किसी एक रिटर्न के लालच में किसी एक रिस्की असेट क्लास में जाएंगे, जैसे कि इक्विटीज़ हो गया, जो कि 1 साल के लिए नहीं एडवाइजेबल होता, तो वहाँ पे सबसे पहले रिस्क ये आ जाएगा कि 1 साल के बाद क्या वो पैसा उतना ही होएगा जितना आपने निवेश किया, और आप क्या उसको विड्रॉ कर पाएंगे। तो जब भी ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स होते वहाँ पे बेहतर रहेगा कि आप फिक्स्ड इनकम में लगाए, और मेरी समझ में 1 साल के लिए तो आप FD में भी निवेश कर सकते हैं अगर आपको एक गारंटीड रिटर्न चाहिए। और अगर आप तब भी किसी म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाना चाहेंगे, तो जैसे कि हम कुछ कॉल्स पहले बात कर रहे थे, आप एक अच्छे लिक्विड फंड का चुनाव कर सकते हैं।
2: ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट बिग स्टोरी ऑफ द डे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश इंस्ट्रक्शंस ऑन रुपी डेरिवेटिव्स टू कर्ब करेंसी स्पेकुलेशन एंड मेंटेन एन ऑर्डरली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द सेंट्रल बैंक हैज रिड्यूस्ड द थ्रेशोल्ड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस without underlying exposure from $100 million to $5 million across authorized dealers and recognized

0: சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि

0: परियोजनाएं से दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई रेल परियोजना के दूसरे चरण के पून मल्ली वडापलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में शनिवार की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। भारतीय दूतावास ने बताया है कि रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायलों में से एक भारतीय नागरिक की कल मौत हो गई। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वे शोक संतप्त परिवार के संपर्क में हैं और शव को जल्द से जल्द भारत पहुंचाने के लिए हर संभव मदद करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि रियाद हवाई अड्डे पर हमले के बाद रियाद में भारतीय दूतावास हर जरूरी कदम उठा रहा है। सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में कल अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। जल स्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 224 रन का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की ओर से शिमरॉन हैटमायर ने सर्वाधिक 43 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying foundation stones of development projects worth over 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event.

0: எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெற்றது. இன்னும் சில நொடியில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: श्री सुनील पालीवाल सर, आज आपने हमारे देश के करोड़ों युवाओं को जो संदेश दिया है और जिस तरह सरकार के प्रयासों का
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं.
3: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है. भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है. हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है.
2: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडापलानी खंड का शुभारंभ किया. चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया

0: उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और देश के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में शनिवार की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। सऊदी अरब में रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूतियों के हमले में 309 घायलों में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। इस हमले में मरने वालों की संख्या अब 13 हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि वह उन्हें हर संभव मदद देने के लिए उनके संपर्क में हैं। दूतावास ने बताया कि शनिवार को हुए हमले में घायल हुए लगभग 300 लोगों में 10 भारतीय भी शामिल थे। भारतीय अधिकारी घायलों की हालत के बारे में जानकारी लेने के लिए स्थानीय अधिकारियों और अस्पताल प्रशासन के संपर्क में हैं। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। नोएडा नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में कल अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया। 224 रन का लक्ष्य लिए पिच पर उतरी वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की ओर से शिमरॉन हेटमायर ने सर्वाधिक 43 रन बनाए, जबकि कामिल पूरन ने 42 रन की पारी खेली। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में शानदार 69 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying the foundation stones of development projects worth over 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event held at IIT Madras yesterday. The projects span road and rail transport, port infrastructure, petroleum and scientific research. Earlier in the day, Mr. Modi inaugurated the Pune-Marle-Vadaparani stretch of Phase 2 of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around 4,900 crore rupees. The Prime Minister and Chief Minister C. Joseph Vijay jointly flagged off the new metro services and travelled on the train. Prime Minister Narendra Modi also attended the Golden Jubilee celebrations of Jai Gopal Garudiya Hindu Vidyalaya in Chennai. Addressing the students, the Prime Minister highlighted India's manufacturing growth and said that the sector's expansion had created direct and indirect employment opportunities for young people.
1: Aaj component se technology और फिनिश प्रोडक्ट का

0: சில நொடிகள் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल योजना के दूसरे चरण के पूनमपल्ली वडापलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली

0: में शनिवार की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। दुनिया भर के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किए गए हमले की निंदा की है। इस हमले में एक भारतीय नागरिक सहित 13 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अमरीकी मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि अमरीका यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब के हमलों में शामिल होने पर विचार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरस, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने हमले की निंदा की है। पाकिस्तान, कतर, फलस्तीन, जॉर्डन और मलेशिया ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त की है। यूरोपीय संघ के प्रमुख ने नागरिकों पर हुए हमलों को जानलेवा बताया और कहा कि उन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में कल अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज़ को 14 रन से हरा दिया। 224 रन का लक्ष्य लिए पिच पर उतरी वेस्टइंडीज़ की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज़ की ओर से शिमरॉन हेटमायर ने सर्वाधिक 43 रन बनाए जबकि कामिल पूरन ने 42 रन की पारी खेली। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में शानदार 69 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying the foundation stones of development projects worth over 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event held at IIT Madras yesterday. The projects span road and rail transport, port infrastructure, petroleum and scientific research. Earlier in the day, Mr. Modi inaugurated the Poormalle-Vadapalani stretch of Phase 2 of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around 4,900 crore rupees. The Prime Minister and Chief Minister C. Joseph Vijay jointly flagged off the new metro services and travelled on the train. Prime Minister Narendra Modi has also attended Golden Jubilee celebrations at Jai Gopal Garudiya Hindu Vidyalaya in Chennai. Addressing the students, the Prime Minister highlighted India's manufacturing growth and said the sector's expansion had created direct and indirect employment opportunities for young people.
2: Aaj component se technology aur finished products ka har rajya mein kendra sarkar product chain ko majboot kar rahi hai aur inhi koshishon ka parinam hai aaj hum duniya ke second largest mobile manufacturer hai. 2014 se ab tak हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 11 टाइम्स बढ़े हैं, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 50 टाइम्स बढ़े हैं और हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है।
1: The Supreme Court directed authorities to ensure that people gathering peacefully are not illegally detained and that the free movement of people is allowed subject to traffic regulations. It also called for a review of barricading arrangements in Delhi and directed the centre to ensure that metro services operate according to the normal schedule and that internet services remain uninterrupted, subject to law and order requirements. It further directed that lawyers must not be obstructed from discharging their professional duties, issuing notice to the centre on a plea seeking initiation of contempt proceedings against authorities over alleged violations of its directions. The Supreme Court said it would hear all parties and ensure that no inconvenience was caused.

0: எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய நெஞ்சம் மறப்பதில்லை நிகழ்ச்சி கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनामल्ली वडापलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि 11 भारतीय नाविकों को ले जा रहा मार्शल द्वीप ध्वजांकित टैंकर MT वाल्थेरा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक अज्ञात प्रक्षेप्य से टकरा गया, जिसके बाद जहाज पर आग लग गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारतीय चालक दल के सभी 11 सदस्य सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने यह भी बताया कि 11 भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर MT पेट्रो डॉल्फिन पर सोहर एंकरेज में ड्रोन हमला किया गया। उन्होंने कहा कि चालक दल के 9 भारतीय सदस्यों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है, जबकि 2 भारतीय नागरिक फिलहाल लापता हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रालय लापता कर्मियों का सुरक्षित पता लगाने के लिए हर संभव कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों से लड़ रहे सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि कल रियाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई

अड्डे पर एक प्रोजेक्टाइल यात्री टर्मिनल से टकरा गया। इससे एक दिन पहले शनिवार को इसी टर्मिनल पर मिसाइल हमले में 12 लोगों की मौत हुई थी। हमले में घायल एक भारतीय यात्री की कल मौत हो गई। हुती विद्रोहियों ने इन सभी हमलों की जिम्मेदारी ली है। सऊदी अरब के अधिकारियों ने बताया कि कल के नए हमले में भी कुछ लोग घायल हुए हैं। शनिवार को हुआ मिसाइल हमला ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी के अरब देशों में सबसे घातक हमला था। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया। 224 रन का लक्ष्य लिए पिच पर उतरी वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की ओर से शिमरॉन हेटमायर ने सर्वाधिक 43 रन बनाए, जबकि कपिल कामिल पूरन ने 42 रन की पारी खेली। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में शानदार 69 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। सीरीज का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இனியராகும் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை பண்டிட் ஓம்காரநாத் தாகூர் அவர்களின் பாட்டும் பண்டிட் சி ஆர் வியாஸ் அவர்களின் பாட்டும் நினைவாக ஃபரீதா கான் வழங்கிய கஜலும் கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पुनमल्ली वडापलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। केंद्रीय पोत पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि 11 भारतीय नाविकों को ले जा रहा मार्शल द्वीप ध्वजांकित टैंकर MT वाल्थेरा हॉर्मूज जलडमरू मध्य में एक अज्ञात प्रक्षेप से टकरा गया, जिसके बाद जहाज पर आग लग गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि सभी 11 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने यह भी बताया कि 11 भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर MT पेट्रो डॉल्फिन पर सोहर एंकरेज में ड्रोन हमला किया गया। उन्होंने कहा कि चालक दल के 9 भारतीय सदस्यों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है, जबकि 2 भारतीय नागरिक लापता हैं। तलाशी और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि रूस और यूक्रेन 4.5 साल से चल रहे युद्ध में एनर्जी सीज़फ़ायर यानी ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े हमलों को रोकने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने इसकी शर्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट में बस इतना बताया गया कि यह युद्ध विराम तुरंत लागू हो गया है और इससे न तोड़ने की चेतावनी दी गई है। रूस ने इस पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है और अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय ने भी ट्रंप के पोस्ट के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया। 224 रन का लक्ष्य लिए पिच पर उतरी वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की ओर से शिमरॉन हेटमायर ने सर्वाधिक 43 रन बनाए, जबकि कामिल पूरन ने 42 रन की पारी खेली। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में शानदार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पुनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। इसके लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। सऊदी अरब में रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूतियों के हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। हमले में मरने वालों की संख्या अब 13 हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि वो उन्हें हर जरूरी मदद देने के लिए उनके संपर्क में है। दूतावास ने बताया कि शनिवार को हुए हमले में घायल हुए लगभग 300 लोगों में 10 भारतीय भी शामिल थे। भारतीय अधिकारी घायलों की हालत के बारे में जानकारी लेने के लिए स्थानीय अधिकारियों और अस्पताल प्रशासन के संपर्क में है। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि रूस और यूक्रेन 4.5 साल से चल रहे युद्ध में एनर्जी सीज फायर पर सहमत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने इसकी शर्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये युद्ध विराम तुरंत लागू हो गया है और इसे न तोड़ने की चेतावनी दी गई है। रूस ने इस पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है और अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय ने भी ट्रंप के पोस्ट के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। श्रृंखला का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।